कौन पे ले मुझेगी अमी मुए कौन पे ले मुझेगी समझ ले गाड़ी कमा समझ ले दुए गाड़ी कमा आधी दुए